एकादशि पंचदशमागुन मन भरत प्रियति सौमता नमस्ते ओम के तुम लिमा लिमा तुम मम।